पास की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: Radio.
1: काम कर गई दोनों ही मेरी बख्शिश के लिए मोमिन की दुआ सूफी की सदा

असंक अमर कर जाए जोर, असंक गलवड हत्या कमाए, असंक पापी पाप कर जाए, असंक कूड़े यार कूड़े फिराए, असंक मलेच मल भक खाए।

कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनात जुग जुग एको वेस एक दूजी बो लख होवें लख होवें लखवीस लख

जोर ना जुगती छुटे संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान नदरी करम पवे निशान कच पकाई उथे पाए नानक गया जापे जाए।

0: स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
1: लाइका रेडियो 90s, लाइका रेडियो पंजाबी, लाइका गोल्ड 2, नाउ अवेलेबल ऑन द लाइका रेडियो मोबाइल ऐप एंड अलेक्सा.

जाना के हाँ हाँ हाँ और सुनो हाँ एक एक परी थी क्या एक परी थी तोता परी हंसी वो बड़ी थी हाँ हंसी वो बड़ी थी गगन देश था उसका क्या गगन देश था उसका अजब भेष था उसका चले रात आगे सुनो सुनो बात आगे सुनो सुनो सुनो तो अरे अरे सुनो तो हाँ

साकेत तू, अरे अरे अरे ये तो फिर सो गई। अब क्या करूं, अब क्या करूं? कोई है, कोई है, कोई है? अरे हाँ, जाग गई तुम, हैं? जाग गई। और सुनो, और सुनाता हूँ। हाँ।

0: Back-to-back hits across the Leica Radio network.
1: Leica Radio.
0: Traffic and travel.
2: I'm Louisa Gale, and it is slightly better news this Friday morning if you're going to East Midlands Airport, as the M1 is now open as recovery work of this morning's overturned lorry between the airport at Junction 24 and the A42 at Junction 23A has been completed, and traffic is starting to move again, albeit rather slowly, with queues back towards Nottingham and the A52 at Junction 25. And it's slow in Derby on the A52, an accident partially blocking the carriageway around the A61 at the Pentagon Island. And it's still looking very busy through Furness End, an accident still partially blocking the B4098 as you head north towards the Coastal Road. And that's the latest traffic and travel.
0: Leica Radio.
3: This part of the show is sponsored by O Hum Nawa Tum Dena Saath Mera, every day at 8 p.m. on Star Plus, and stream it anytime on Jio Hotstar.
4: Leicester Falcon Cash and Carry Festive Shopping ka perfect destination. Kanish Idols ab available hain sabhi Falcon stores par. Onam Sandhya ke liye pre-bookings bhi shuru ho chuki hain. Falcon Snacks 300 grams ki full range sirf £1.99 each. Mustafa Dehraduni Rice 20 pounds sirf £13.49. Suhana Khaman Thokla 500 grams sirf £1.99 each ya 2 for £2.99. Tilda Grand Basmati 20 kg sirf £29.96. S Motiram Namkeen ab sirf 99 piece se shuru. Aur Herdsman Butter Ghee 20 kg, sir, £10.99.
5: Falcon Cash and Carry, 82A, Syston Street West, Leicester, LE12JU. And 2A, Rollout Sale, Leicester, LE54UN.
6: Leicester, Navratri ni dhammakedar raton mate thai jao ready. KDR Events and Beach Promotions proudly presents Navratri Festival 2026. 11th to 20th October, live from India. Garba, Dandiya, music and a full-on festive vibes. Every night from 7 p.m. at Avanti Field School, Leicester. Tickets, just £5 the start. Book your tickets now on Ticket Source or call BJ 07957-477-330. Radio Partner, Leica Radio.
7: हमारी रक्षक है वो
8: बालाजी टेलीफिल्म्स प्रेजेंट्स द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट
9: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही हैं उन सबका मतलब क्या है कौन कर रहा है ये
8: मिस्ट्री फैंटेसी एक्शन द वन स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया इन सिनेमास फ्राइडे 25th सितंबर फॉर यूके रिलीज डिटेल्स फॉलो बकरानिया मीडिया ऑन इंस्टाग्राम
10: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सीइंग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दे'ल डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410 दैट्स 8574-8410
11: साउथ हॉल ट्रेवल एट ओपन
12: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
0: Save the date. Leica Radio brings you our first ever New Year's Eve bash. Leicester, 31st of December.
13: Hai prasann Mahalakshmi kehti hai bolo prem ki bhasha.
14: Diwali Story, the journey of Ram and Sita.
15: Book now on diwalistory.com. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
16: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
0: From Solihull to Erdington, Leica Radio is now broadcasting throughout Birmingham on full-scale DAB. This is Leica Radio Midlands. Next, the Ravi Sharma Show with Ravi Sharma on Leica Radio Midlands.
17: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

शुक्रवार वर्ष 2026 के सितंबर महीने की 18 तारीख एक और मनोरंजन प्रोग्राम लेकर आपका दोस्त आपका होस्ट रवि शर्मा स्टूडियो में हाजिर है। आप सब की ओर से पहले तो भाई थैंक्स कहूं काजल को। शी विल बी बैक ऑन मंडे।

0: बहुत सारे लोगों का जन्मदिन, कई लोगों की शादी की सालगिरह, किसी की जिंदगी में कोई खास महत्व लेकर के आज का दिन 18 सितंबर शुक्रवार। और साहब अगर देखें तो दिन जो है साल का ये 261वां दिन है, 104 दिन अभी बाकी है इस वर्ष के। एक एक दिन, दिन का एक एक लम्हा जीना है हमें, क्योंकि जो क्षण गुजर गया वो मर गया, लौट कर नहीं आएगा। आइए तैयार हैं हम आपके साथ साझा करने के लिए आज के दिन का एक एक पल। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथि, भाई अष्टमी शुरू होने वाली है, और अष्टमी ये साधारण अष्टमी नहीं, राधा अष्टमी है, चर्चा करेंगे आगे चलकर। फिलहाल तो कार्यक्रम शुरू करें, इजाजत है।
1: Leica Radio. Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world. Cranking out the biggest hits for the capital. This is Leica.
0: प्रोग्राम के शुरू में ही एक बात कहूं, दिल में है एक बात कहूं तो करार हो, चल और थोड़ा साथ अगर ऐतबार हो। मैं बस इसी ख्याल से मिलने गया उसे, शायद उसे भी आज मेरा इंतजार हो। मैं आ गया फरेब में एक रुत के दोस्त, यूं पतझड़ के बाद आई है शायद बहार हो। गरमान जाए तो ये समझना हुआ नहीं, दिल मानता नहीं है अगर दिल में प्यार हो। दौलत का, मोहब्बत का, अकीदत का, हुस्न का, अच्छा नहीं है दोस्त किसी का खुमार हो। ये दिल मेरा है अब भी चरण मुंतजिर तेरा, आ लौट गया दिल पे अगर इख्तियार हो। प्यार करेंगे, बेशुमार करेंगे।

0: Cinemas Friday 25th September. For UK release details, follow Bakrania Media on Instagram.
1: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk. It's back and it's bigger.
2: Leica Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival, powered by Vam Jewelers.
1: On Sunday, 1st November 2026 at the Ram Garia Centre.
2: For sponsorship and store bookings, contact Jack on 07803 240580 or visit diwalishoppingfestival.co.uk.
1: Exclusive charity partner, Go Dharmic.
3: Bring your vision to reality with ImagineX Global. Our team of Imagineers create immersive experiences from digital content to epic live events. Whether it's a high-energy concert, an innovative conference, sleek brand visuals, or stunning photography and videography, for your special moments, we have you covered. We're a tech-driven, human-led creative experience company delivering cutting-edge digital solutions and expert event management. Let's turn your ideas into epic memories. Contact us today at imaginexglobal.com or WhatsApp 0758 580180. And let your ideas take center stage. ImagineX Global, where creativity, technology, and humanity unite the world.
1: LemFi means quicker and safe way to send money.
2: LemFi means low transaction fees and great exchange rates.
1: LemFi means £10 sign-up bonus on registration for transactions over £50. Just use the code LIKA.
2: So send money today to India, Pakistan or Bangladesh with LemFi. Download the LEMFI mobile app today.
4: LemFi is registered by the FCA. T's and C's apply.
5: का नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
6: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
1: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
7: और बहनों भाइयों, आज है 18 सितंबर और पता चला है कि आज फिल्म अभिनेत्री शबाना आजमी का जन्मदिन है. आजमगढ़ में जन्मी थी 1950 में. कैफी आजमी की बेटी और भाई अब जावेद अख्तर की पत्नी शबाना आज अपना जन्मदिन मना रही हैं. अब आप हंसना नहीं, लेकिन मैं बता दूं कि शबाना के साथ भी काम करने का मौका मिला उनके पति जावेद अख्तर साहब और जगजीत सिंह, तीनों के साथ एक जगह भाई यहाँ लंदन में प्रोग्राम पेश करने का अवसर मिला. क्या घड़ियाँ थी वो, क्या क्षण थे. और साहब शबाना को हैप्पी बर्थडे तो बाली भाई भी कह लेंगे, वो उनके बारे में जानकारी जुटा के लाएंगे. आज श्रुति हसन भी अपना जन्मदिन मना रही हैं. श्रुति हसन फिल्म अभिनेत्री, लेकिन साहब फिल्मी हस्तियों के जन्मदिन तो बाली भाई मना लेते हैं. हम असली हीरो का क्या करें, जन्मदिन मनाएं, उन्हें श्रद्धा से याद करें. और उस असली हीरो का नाम है मदन लाल ढींगड़ा. अमृतसर में जन्मे थे 1883 में. आज के दिन शहीद मदन लाल ढींगड़ा, स्वतंत्रता सेनानी. भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, पंडित चंद्रशेखर, भाई कुछ ऐसे शहीद हुए हैं जो 25-26 साल की आयु में, 20-21 साल की आयु में इस देश के लिए शहीद हो गए. शायद उन्हीं की बदौलत आज हम आजादी की फिजा में सांस ले रहे हैं.
8: लाते हैं दुल्हन सभी

0: शहीद मदन लाल ढींगड़ा को समर्पित ये गीत भाई, अपने देश से कितना प्यार था उन दीवानों को, तुझ पे दिल कुर्बान जान कुर्बान, स्वतंत्रता सेनानी मदन लाल ढींगड़ा।
1: Feel good track brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: और भाना भाइयों, अब एक सूचना, और ये सूचना एक उत्सव के विषय में, एक शो के बारे में, एक प्रोग्राम के विषय में। फाइनल फ्यू डेज टू गो टू द दिवाली स्टोरी ब्रॉट टू यू बाय सनातन इवेंट्स एंड एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स आर लाइका रेडियो नेटवर्क। इट टेक्स प्लेस एट ओवो वेम्बली अरीना ऑन 27th ऑफ सितंबर। Doors open at 4:30 p.m. with a student pre-show from 5 p.m. to 5:45 p.m. And the main performance from 6:15 to 9:30 p.m. Tickets www.diwalistory.com. देखना मत भूलिएगा भाई, बड़ा जबरदस्त शो रहेगा ये, क्योंकि इसका एक जो क्या है ना ट्रेलर टाइप, वो हम देख चुके हैं। पूरे लंदन में घूमते हुए कलाकारों ने प्रदर्शन किया था, भारी भीड़ जुटाई थी। राइट, अब समय हुआ जाता है समाचारों का।
1: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
0: कहां से शुरू करें भाई? एक तो भाई, ब्रिटिश वुमन किडनैप्ड इन मलावी, रेस्क्यूड एंड रिटर्न्ड विद हर फैमिली, ये खबर ये यहाँ की। और साहब, इसके अलावा बकिंगम पैलेस से जो विवाद शुरू हुआ है, जो स्वर्गीय प्रिंसेस डायना के भाई ने अपनी किताब में कुछ क्लेम करके क्या भाई, वो अभी तक समाप्त नहीं हुआ है और सवालों के घेरे में वो खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं सम्राट को, जो समय प्रिंस चार्ल्स से उनके पति। इसके अलावा भाई, आम समाचारों में, नेशनल और इंटरनेशनल समाचारों में क्या क्या है, लेट्स फाइंड आउट। लाइका रेडियो नेटवर्क, अब आप रवि शर्मा से आज के प्रमुख समाचार सुनिए। इसराइल ने साउथ लेबनान के कुछ हिस्सों पर फिर से हवाई हमले किए हैं। पता चला है कि लेबनान की सरकारी समाचार एजेंसी ने ही बताया है कि इजरायली फौज ने दक्षिणी लेबनान में कई एयर अटैक किए हैं। इस खबर के मुताबिक इजरायली हवाई जहाजों ने कल बृहस्पतिवार की शाम को तालुसा इलाके को निशाना बनाया और कंतारा के झंझल इलाके में भी दो हमले किए। क्रिकेट की बात करें, इसलिए क्या भाई, एशियन गेम्स क्रिकेट में भारतीय महिला टीम ने जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में एंट्री कर ली है। एशियन गेम्स 2026 में भारत ने महिला क्रिकेट के आखिरी क्वार्टर फाइनल में जापान को हरा दिया, पर क्या खूबसूरती से हराया। आज खेले गए इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जापान की 8 विकेट से हार हुई। जापान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 57 रन ही बना पाई, जबकि भारत ने यह टारगेट 5 ओवर में हासिल कर लिया। हालांकि उसे 2 विकेट खोने पड़े, लेकिन भारत की तरफ से भाई, मेरे शहर की उस कन्या शेफाली ने 14 गेंदों पर 6 चौके और 2 छक्कों की मदद से 40 रन बनाए और ऋषा घोष ने 6 गेंदों पर 12 रन बनाए, दोनों नॉट आउट रही। और इस तरह से भाई वो अब क्वार्टर फाइनल में एंट्री कर गए हैं, क्वार्टर फाइनल में जापान को हरा दिया, सेमीफाइनल में एंटर कर गए हैं। क्रिकेट की एक और खबर आगे चल करके देंगे। दक्षिण कोरिया का हॉर्मुज स्ट्रेट में फौज तैनात करने से इनकार आ गया है। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ली जे म्योंग ने आज कहा कि उनका मुल्क हॉर्मुज स्ट्रेट में अपनी फौज तैनात नहीं करेगा। पता चला है कि राष्ट्रपति ली ने यह बयान दिया है कि मैं ये बात साफ कर देना चाहता हूं कि हम किसी भी तरह की फौजी तैनाती नहीं करेंगे, हम किसी भी जंग में भाग नहीं लेंगे और ना ही उसमें शामिल होंगे। बता दें आपको कि 2 सप्ताह पहले ईरानी विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन इस्माइल बगाई ने साउथ कोरिया को वार्निंग देते हुए कहा था कि फारस की खाड़ी और हॉर्मुज स्ट्रेट में अन्य पक्षों की कोई भी परिचालन या भागीदारी जो है वो समर्थन देने के बराबर होगी और इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे, हमें स्वीकार नहीं होगा। मुज्तबा खमरई के सलाहकार ने कहा है कि जब तक ट्रंप और नेतन्याहू सत्ता में रहेंगे हॉर्मूज बंद रहेगा। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खमरई के पॉलिटिकल एडवाइजर मोहम्मद बाकिर जौलकदर ने कहा है कि जब तक अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में है उनके देश का हॉर्मूज स्ट्रेट को खोलने का कोई इरादा नहीं है। पता चला है कि ईरान ने आक्रामक दुश्मन की ताकत को तोड़ने और अहमकारी पावर्स की कमर तोड़ने का फैसला कर लिया है। उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्राइम मिनिस्टर बिन्यामिन नेतन्याहू को सत्ता से हटाए जाने तक हॉर्मूज स्ट्रेट बंद रहेगा। भारत से आने वाली खबरों में लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने तृणमूल कांग्रेस और उसके चुनाव चिन्ह को चुनाव आयोग की ओर से फ्रीज करने के फैसले पर रिएक्ट किया है। उन्होंने फेसबुक पर लिखा है कि पहले शिवसेना, फिर एनसीपी और अब टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस, हर बार एक ही पैटर्न, बीजेपी और चुनाव कमीशन मिलकर एक पार्टी को तोड़ते हैं, फिर उसका चुनाव चिन्ह छीन लिया जाता है और जब पूरी की पूरी पार्टी चोरी हो सकती है तो करोड़ों भारतीयों के वोट चोरी होना भी हैरानी की बात नहीं है। राहुल गांधी का बयान। एप्पल के 18 प्रो सीरीज के फोन खरीदने के लिए भाई भारत के स्टोरों में भारी भीड़ उमड़ रही है। कमाल है, भारत में आज से एप्पल के आईफोन 18 प्रो और आईफोन 18 प्रो मैक्स की आधिकारिक बिक्री शुरू हो गई है और इस फोन को खरीदने के लिए दिल्ली, नोएडा, मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहरों में रात से ही कस्टमर्स मोबाइल स्टोरों के बाहर जमा होने लग गए थे। लाइनें लगी हैं और प्राइस पता है कितनी है? आईफोन 18 प्रो के 256 GB मॉडल की कीमत 1,65,000 है, जबकि 512 GB का मॉडल 1,89,000 रुपए है, जबकि 1 TB क्षमता के मॉडल की कीमत 2,39,000 रुपए और 2 TB क्षमता वाले मॉडल की प्राइस 3,14,900 रुपीज, 314,900 रुपीज, और उसके लिए लाइन लगी है खरीदने के लिए। कौन कहता है कि भारत देश जो है वो गरीब है? अमेरिका ने ईरानी दल को न्यूयॉर्क आने की दी इजाजत। टीम में पेजेश्कियान और अराग्ची शामिल हैं। अमेरिकी सरकार ने ईरान के अधिकारियों को अगले हफ्ते न्यूयॉर्क में होने वाली यूएन की जनरल असेंबली में हिस्सा लेने के लिए वीजा दे दिया है। दोनों देशों के बीच युद्ध अब 7वें महीने में एंटर कर रहा है। और भाई क्रिकेट से जुड़ी एक और खबर, कल बड़ा तूफान मचा दिया क्रिकेट ग्राउंड में अभिषेक शर्मा ने। अफगानिस्तान इस तूफान को झेल नहीं पाया। भारत ने सीरीज के लिए क्लीन स्वीप की। भारत ने अफगानिस्तान को तीसरे T20 मुकाबले में 127 रन के बड़े अंतर से हरा दिया। भाई T20 20 ओवर्स का मैच और उसमें 127 रन से जीत। कल दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ जीत हासिल करके भारत ने 3 मैचों की सीरीज 3-0 से जीती। भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 30 गेंदों में सेंचुरी जड़ दी और 34 गेंदों पर 108 रन बना करके वो आउट हो गए। उन्होंने अपनी पारी में 11 छक्के और 9 चौके लगाए। लोग कहते हैं कि भाई एक शर्मा जाता है तो दूसरा आ जाता है वैसा ही धुआंधार बन के। रोहित शर्मा उनके जाने की तैयारी है तो अभिषेक शर्मा उनकी जगह लेने जा रहे हैं लगता है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
2: दोस्तों, आज इस महफिल में कई मस्ताने हैं, एक शम्मा, दो परवाने, एक हसीना और दो दीवाने हैं, लेकिन एक है हीरो और एक है जीरो। अब आप ही बताइए कौन है हीरो और कौन है

स्वागत है आपका मनोरंजन कार्यक्रम के दूसरे दौर में विद चिंतन। माय नेम इज रवि शर्मा और बहन भाइयों, ये प्रोग्राम लेकर मैं दोपहर बाद एक बजे तक आपकी सेवा में हाजिर हूं। समय हो गया है 11:05। और ये समय है चिंतन का, विचार करने का। और आज चिंतन में हम जो विचार शामिल कर रहे हैं वो बड़ा कॉमन है। लोग बहुत बातें करते हैं प्यार की, मोहब्बत की, हमारे सारे गीतों में, सारी फिल्मों में, शायरी में, डायरी में, बस यही एक शब्द बहुत बार दोहराया जाता है। लेकिन प्यार का मतलब किसी की समझ में आता है? प्यार समर्पण होता है, ये कौन कहता है? भाई आइए आज के दिन की ओर ध्यान दिलाते हैं। आज का चिंतन हमें तरुण भाई ने भिजवाया है। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर राउंसलो के सेवक हैं तरुण, और वो लिखते हैं कि रवि भाई आज राधा अष्टमी है। हाँ बहनों भाइयों, बता दें आपको, लंदन में आज 18 सितंबर को सप्तमी सुबह 8:30 तक थी और उसके बाद से अष्टमी शुरू हो चुकी है और राधा अष्टमी का पर्व आज है। पंचांग में आज ही लिखी है लंदन में अष्टमी। राधा अष्टमी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी जो आज तिथि है, ये श्री राधा जी के प्रागट्य दिवस के रूप में ये दिन श्रद्धा से मनाया जाता है। 2026 में मुख्य राधा अष्टमी हालांकि कल तक चलेगी पर आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब ये राधा कौन है? श्री कृष्ण की पत्नी नहीं थी, श्री कृष्ण तो बचपन में ही राधा से अलग हो गए थे, लेकिन गोपियों ने उस ईश्वरीय स्वरूप को पहचान लिया था। राधा ने कृष्ण में छुपे उस विष्णु अवतार भगवान श्याम सुंदर 16 कला संपूर्ण प्रभु को अपना मान लिया था। राधा को कृष्ण भक्ति में प्रेम भक्ति और समर्पण का सिंबल माना जाता है। राधा अष्टमी केवल जन्मोत्सव नहीं है बल्कि भक्त और भगवान के बीच प्रेम पूर्ण रिश्ते को स्मरण करने का एक अवसर है, एक पावन त्योहार। आपको बता दें श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान कहते थे कि अगर मैं किसी के सामने कमजोर हूं, किसी से मैं हार स्वीकार करता हूं तो वो राधा है। करोड़ों वज्र पर्वतों को उखाड़ सकता हूं, हाथियों को पछाड़ सकता हूं, कोटि वज्र तोड़ देऊं, धनुष मरोड़ डारूं, पत्थर निचोड़ नित करूं ऐसे खेल, खेल ही में खंबा फाड़ धरूं, पीठ पे पहाड़ गज दिग्गज पछाड़ डारूं, काल के नकेल पर केली मेल मुझ मोहे न चाय दे, तनिक छाछ पे छोरी ये ब्रिज की छोरियां मुझे नचाती हैं, मेरे हाथ बांध करके कहती है नाचो और मैं नाचता हूं। ये प्रेम की ताकत है, प्रेम बहुत शक्तिशाली होता है बहन भाइयों, नफरत उसके सामने बहुत कमजोर होती है। आज राधा अष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है और राधा का गुणगान किया जा रहा है। अब देखिए प्रेम की ताकत, राधा भगवान श्याम सुंदर से प्रेम करती हैं, लेकिन प्रेम का मतलब पाना नहीं है। राधा को श्याम कभी नहीं मिले, मीरा को कृष्ण नहीं मिले, लेकिन उनका नाम श्री कृष्ण के साथ आता है। प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है, प्रेम त्याग है, प्रेम में विश्वास है, प्रेम में समर्पण है। भक्ति परंपरा में कृष्ण से पहले जो नाम आता है वो राधा का है। कृष्ण को पाने की साधना भक्ति है, कृष्ण की शक्ति है राधा। शक्तिमान है भगवान क्योंकि उनके साथ शक्ति है, इसलिए शक्ति का नाम पहले आता है।
आप किसी भी देवता का नाम पहले नहीं लेंगे, उसकी शक्ति का नाम लेंगे। राधे श्याम, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, सीताराम, भगवती का नाम पहले, वो ताकत है। जब श्री कृष्ण बचपन में ही किशोर अवस्था में जब वो गोकुल को छोड़कर मथुरा जाने लगे तो गोपियां बहुत व्याकुल हो उठी। राधा भी अपने प्रियतम से बिछड़कर खुश तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने श्याम को रोका नहीं। मैं रोकूंगी नहीं श्याम, जाओ अपना कर्तव्य निभाओ, जिस काम के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है वो करके दिखाओ। प्रेम बांधता नहीं है, राधा ने श्री कृष्ण को बंधन में नहीं बांधा, मुक्त कर दिया। अब देखिए तरुण भाई जो इशारा कर रहे हैं, हमारे लाइका हेडक्वार्टर पर श्री श्री रविशंकर आए और वो एक बात कह के गए जो मेरे दिल में आज भी सुरक्षित है, बार बार दोहराता हूं। उन्होंने प्रेम का स्वरूप बताया। वो कहने लगे, प्यार तो अधूरा ही होता है, जो पूरा हो गया वो प्यार कहां रहा? ध्यान से सुन लीजिए, जो अधूरा होता है, राधा का प्यार अधूरा है, मीरा का प्रेम अधूरा है, इसीलिए आज भी कायम है। भाई जो चीज अधूरी होगी उसमें प्यास होगी, चाहत होगी, एक निरंतरता होगी, वो बना रहेगा, पर जो पूरा हो गया वो तो खत्म हो गया। ये कहने में भी आता ना कि फला आदमी पूरा हो गया, अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो वो पूरा हुआ माना जाता है। प्यार पूरा नहीं होता, ये निरंतर एक लगातार प्रोसेस है, इसलिए प्यार तो अधूरा ही होता है। प्यार बंधन में नहीं बांधता, मुक्त कर देता है। कभी ब्रिज जाएंगे? ब्रिज में ही क्यों, आपकी यहां मंदिरों में भी जाएंगे तो आप हैरान होंगे जान करके कि आपको जय श्री कृष्णा कहने वाले कुछ लोग मिलेंगे, लेकिन वृंदावन में कोई कृष्ण का नाम नहीं लेगा, वहां तो राधे राधे चलता है।

राधे राधे हमें शाम से मिला दे, यानी प्रेम है समर्पण है वही भक्ति है, वही प्यार है त्याग है। कुछ पाने की इच्छा नहीं, देना ही प्यार है, उसका नाम है राधा। राधा ही शाम से मिला सकती है।

0: प्यार तो अधूरा ही होता है, मतलब जो निरंतर होता है, जो समाप्त नहीं होता, जो पूरा नहीं होता, जो चलता ही रहता है। दिल बनकर धड़कता है, आंसू बनकर आंखों से बहता है, इंतजार बनकर राह देखता है, प्रेम तो वही है। आज का चिंतन, आज का विचार राधाष्टमी के पावन अवसर पर, भाई आज का चिंतन जिसके लिए प्रेरणा हमने ली श्री श्री रविशंकर जी से, और आलेख था श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर हांसलो से तरुण भाई का। और भर भाइयों, चिंतन के साथ जुड़ा गीत भजन, वृंदावन का बड़ा मस्ती भरा भजन जो आजकल भजन जैमिंग में बहुत गूंजता है। और फिर याद दिला दूं कि कभी आप ब्रिज में जाएंगे ना, तो वहां जय श्री कृष्णा कहने की बजाय लोग एक दूसरे को ग्रीट करते हैं राधे राधे कह के। यहां भी मैंने बहुत जगह देखा है, क्योंकि राधा और श्याम प्रेम स्वरूप में एक हो गए हैं। राधा का नाम लेने से कृष्ण प्रसन्न होते हैं। राधाष्टमी की अपने सभी श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए समेटते हैं चिंतन को, याद दिलाते हैं कि भाई चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद मनोरंजन कार्यक्रम का हिस्सा बनता है। आज का चिंतन अब समाप्त होता है।
1: चिंतन चिंतन
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK. आज एक पाउंड के बदले कितने भारतीय रुपए दे रहे हैं? नोट कीजिए. If you want to send money to India, this is the right time because the rate is good. For £1, State Bank of India UK are giving 127.8 rupees. 127 rupees or 80 paise. You can transfer via branch, online or by using the Yono SBI UK mobile app.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
3: Leica Radio.
4: This part of the show is sponsored by Anupama. Every day at 8:30 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar. Get ready, UK. Snell Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night.
5: Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Snell Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
4: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
5: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite, and AXS.
4: For more information, contact 07585-801-801. Official radio partner, Leica Radio Network.
6: Pendant of function lakha hua hai.
7: Southall Travel, 7 days a week. Southall Travel, 24 hours a day, we're at our peak.
8: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
7: Southall Travel.
8: Call 0208-574-8410. 0208-574-8410.
7: Southall Travel can take you there.
9: Southall Travel, at all protected.
10: We're finally going home for the wedding.
11: I know, I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
10: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
11: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destination with 4G and 5G where available.
10: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
11: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
10: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
12: Save an extra 10% with code ROM. Free 10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
13: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
14: Oh,

0: Listen wherever you are by downloading the Leica Radio mobile app now.
1: वेरी गुड मॉर्निंग टू यू हनो भाई. एक सूचना है आप सबके लिए भाई. ये बड़ी काम की बात है, खासकर जो वैन चलाती हैं, जो वैन का इस्तेमाल करती हैं अपने बिजनेस में, उनके लिए संदेश है मर्सिडीज बेंज वैन्स की ओर से और लाइका रेडियो नेटवर्क के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है एक ऐसी जानकारी जो शायद आपको थोड़ा चौंका सकती है. यूके में गाड़ी खराब होने की वजह से बिजनेस को हर वैन पर औसतन हर रोज 1172 पाउंड का नुकसान होता है. इसलिए मर्सिडीज बेंज वैन्स लेकर आए हैं अप टाइम प्रॉमिस, रोड साइड असिस्टेंस और सर्विस के लिए अधिक समय से लेकर वाहन की रियल टाइम जांच और खराबियों की तुरंत पहचान और भी बहुत कुछ उनके पास आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए कई फायदे हैं. तो मर्सिडीज बेंज वैन्स आपके साथ हैं. आज ही मर्सिडीज बेंज वैन्स सर्च करें और अप टाइम प्रॉमिस के बारे में जानकारी हासिल करें. एक और संदेश है भाई हमारे पास, और ये संदेश है क्रिकेट के बारे में. हालांकि ये T20 सीरीज तो खत्म हो गई है, पर ये और भी आगे भाई क्रिकेट के बारे में सूचना दे रहे हैं. कैच लाइव एंड एक्सक्लूसिव क्रिकेट एक्शन बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान जो सीरीज चल रही है ऑन जियो हॉटस्टार. 3 वन डे इंटरनेशनल्स फ्रॉम 13th ऑफ सेप्टेम्बर अंटिल द थर्सडे ऑन 17th ऑफ सेप्टेम्बर फ्रॉम 2:50 PM. ये तो सीरीज भाई हो चुकी है. भारत ने अफगानिस्तान को तीनों मैचेस में हरा दिया और तीसरे में तो कमाल कर दिया भाई. अभिषेक शर्मा ने 30 गेंदों पर शतक बनाकर. और डाउनलोड एंड सब्सक्राइब द जियो हॉटस्टार अपना ऐप नाउ. जियो हॉटस्टार इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन स्काई टीवी एज एन ऐप.
0: Leica Radio. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
3: Like a radio.
0: Like a extra podcast update.
4: लाइक एक्स्ट्रा पर हमारा एपिसोड नंबर 34 उपलब्ध है. टाइटल है जिसका मॉडर्न हैरेसमेंट, होस्टेड बाय दीप राजा. दीप राजा स्पीक्स टू संगीता पांडे ऑफ IIW एंड गायत्री शेनॉय, प्रिंसिपल बिजनेस एंड एनालिस्ट अबाउट मॉडर्न हैरेसमेंट. ये आधुनिक प्रताड़ना क्या है? दे एक्सप्लोर मॉडर्न हैरेसमेंट एट वर्क, फैमिली एंड व्हेन वन शुड स्पीक अप. भाई एक्स्ट्रा लाइक एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स.
0: लाइक एक्स्ट्रा इज हियर. गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर द मिडलैंड्स एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव.
5: दुबई मा प्रॉपर्टी खरीदवानी तमारी सफर हवे लेस्टर थी शुरू थाय छे.
6: हेलो एवरीवन, दिस इज रिजवान साजन, फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ डेन्यू प्रॉपर्टीज, अने अमे लावी रह्या छे दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो मारियट होटल लेस्टर मा 26-27 सितंबर मा.
5: पोर्ट्स रियल एस्टेट तमने आमंत्रित करे छे डेन्यू प्रॉपर्टी साथे दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो मा. मैरियट होटल स्मिथवे लेस्टर LE19 1SW 26 and 27 सितंबर सवारे 10 to 8 PM सुधी. जानो ग्रीन्स, ब्रीज अने शाहरुख विषे. प्रॉपर्टीज 190,000 pounds थी. बुकिंग मात्र 5,000 pounds थी. दुबई नी मफत फ्लाई आउट ऑफर्स विषे पूछो. दुबई नी तमारी सफर अहीं थी शुरू थाय छे. शरतो लागू.
7: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन. कनीश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर. ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं. फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच. मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 pounds सिर्फ 13.49. सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99. टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ 29.96. एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 9 rupees से शुरू. और हर्जमैन बटर घी 20 kg सिर्फ 10.99.
8: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइज 10 स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE12JU एंड 2A रोल आउट सेल लिस्टर LE54UN.
9: लंदन, आर यू रेडी? राघव एंड्स प्रेजेंट्स टू यू फॉर द फर्स्ट टाइम लेजेंड उदित नारायण एंड सन आदित्य नारायण परफॉर्मिंग लाइव विद बड़े मियां छोटे मियां दिस डिसम्बर. One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ova Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
10: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
11: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy.
10: Live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
11: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
10: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
11: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
12: Citybound Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
13: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
12: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
13: Also explore 2026 cruises
12: from Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester or call Citybound Travel on 01162 167 225. We're at
14: From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
0: Save the date. Leica Radio brings you our first ever New Year's Eve bash. Leicester, 31st of December. Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
15: If I'm going out on my new paddleboard, the last thing I'm taking is my phone, right? Buoyancy aid, fine, but mobile? My whole life's on that phone. Why would I risk losing it in the...
16: Coast Guard! Help!
17: Okay, help's on its way.
18: Grab my hand!
19: Phone. In a waterproof pouch. It's the first thing I pack now.
20: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard. And please, respect the water.
21: Street food ka asli maza lo quality street food Leicester par. Try kijiye crispy pani puri, spicy vada pav aur delicious pav bhaji. Sab kuch fresh aur tasty. Light khana hai to hamare cheesy sandwiches aur kid friendly treats try kijiye. To milte hain 62 to 64 Belgrave Road, LE4 5AS. Call on 0116-332-5100 aur menu online bhi check kar sakte hain. Quality street food Luton and Wembley mein to hai, lekin ab asli Indian flavors Leicester mein.
0: This is the freshest sound across the Midlands. We are Leica Radio.

0: कोई कोई अपने पिया के करीब है। भाई आपकी तस्वीर देखकर तो ऐसा ही लगता है स्वीटी कालड़ा जी, आपने जो तस्वीर लगा रखी है संदेश में, कहती है कि बचपन याद आ गया, वो खेल वो साथी वो झूले, वो दौड़ के कहना आ छूले, हम आज तलक भी ना भूले वो प्यार पुराना बचपन का। भाई ये उसी फिल्म का गीत जिसके बोल मैं सुनवा रहा था, दुनिया में ऐसा कहां सबका नसीब है, कहती है बचपन तो याद आएगा, गोल्ड माइन के ये हीरे हैं, मतलब सोने के कण हैं गीतों में। आपके नाम किया स्वीटी जी ये गीत हमने, देशराज बसन साहब क्या बात है। कहते हैं एक पहलवान बस में चढ़ा, कंडक्टर का भाई साहब टिकट, पहलवान बोला हम टिकट नहीं लेते। अब भाई उसके डोड़े देख करके उसकी चौड़ी छाती इतना बड़ी बड़ी मूछों वाला कंडक्टर बेचारा चुप रह गया देख के कि क्या फायदा पंगा लेने से। और पहलवान रोज बस में चढ़ता पर टिकट नहीं लेता और वो कंडक्टर पूछने की हिम्मत भी नहीं करता। ऐसे 6 महीने गुजर गए, 6 महीने बाद भाई कंडक्टर ने क्या किया, अपनी बॉडी बनाई, खूब घी पी के कसरत करके उसने वैसे ही तंदुरुस्त बॉडी जैसी उस पहलवान की थी बना ली। और अब वो जब बस में चढ़ा उसने देखा उस पहलवान को तो उसने कहा टिकट लीजिए। पहलवान बोला हम टिकट नहीं लेते। कंडक्टर तैयार था, क्यों नहीं लेते? पहलवान बोला क्योंकि हमारे पास पास है महीने का। कर लो क्या करोगे।
1: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
0: भाई एक बात समझ में नहीं आती, तोता तोती की कहानी नहीं होती, तोता मैना की कहानी क्यों होती है? भाई मुश्किल हो जाता, तोता तोती की पहचान कैसे करें? आज काका हाथरस जी का जन्मदिन है, हास्यरस, वो कहते हैं हाथरस नहीं, हमारे शहर का नाम हास्यरस था, काका हाथरस ही कहते थे। किसी ने हमसे पूछा का बताइए श्रीमान तोता तोती की भला कैसे हो पहचान, तो हमने कहा भाई असली पहचान तो दाना डालने से होती है, अगर वो दाना चुगता है तो तोता है और दाना चुगती है तो तोती है।

बड़े सोंगर बड़े एक्टर ही वाज शशि कपूर जिनका जन्म नाम तो था बलबीर राज कपूर 18 मार्च 1938 में उनका जन्म हुआ था कोलकाता में और भाई निधन हुआ मुंबई में और निधन हुआ उनका 4 दिसंबर 2017 में 79 बरस की आयु में महाराष्ट्र

0: मोटापा उन्हें भी घेर चुका था, लेकिन शशि कपूर साहब बड़े दिलचस्प तबीयत के एक्टर थे और भाई इस सप्ताह वो हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक रहे। उनकी फिल्मों के गीत गूंजे, आपने सुने और पसंद किए, तो थैंक यू वेरी मच शशि साहब। आप जहां भी हैं ईश्वर आपकी आत्मा को सदगति प्रदान करें, अपने चरणों में स्थान दें।
1: फील गुड ट्रैक ब्रॉट टू यू बाय डेरी वैली,
2: सॉफ्ट एंड टेंडर लाइक ग्रैंडमास वार्म हग। डेरी वैली पनीर इज मेड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड जीरो प्रिजर्वेटिव्स। विजिट डेरीवैली.net।

और वही इससे पहले कि हमारे ये क्लाइंट्स रूट जाएं, बता दूं आपको उदित नारायण और आदित्य नारायण आ रहे हैं। 90s बॉलीवुड लेजेंड उदित नारायण परफॉर्म्स विद हिज सन आदित्य नारायण एट ओवो अरीना वेम्बली ऑन संडे द 20th ऑफ दिसंबर। टिकट्स अवेलेबल फ्रॉम टिकट मास्टर एंड AXS एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क।

0: और इन अदाओं पे गुस्सा आता है भाई किसी किसी को कौन सी अदाओं पे द आर्चबिशप ऑफ कैंटरबरीज ऑफिस हैज विथड्रॉन एन अवार्ड प्रेजेंटेड टू अ मुस्लिम क्लेरिक हु प्रीवियसली प्लेस्ड टू बेस्ट एन ऑनरेरी टाइटल ऑन ओसामा बिन लादेन अब देखिए किसी को बुला करके आप सम्मानित कर रहे हैं अवार्ड दे रहे हैं बाद में पता लगता है कि भाई वो तो ओसामा बिन लादेन का प्रशंसक है और उनकी तारीफ करता है अब आतंक को भाई क्या कहते हैं कि ऑनर देने वाले या उसकी प्रशंसा करने वाले इस अवार्ड के अधिकारी नहीं है हाफिज मोहम्मद ताहिर मोहम्मद अशरफ ही वॉज गिवन द हर्बर्ट वाल्टर अवार्ड फॉर रिकॉन्सिलिएशन एंड इंटरफेथ कॉपरेशन लेकिन बाद में जब पता लगा कि भाई उनका स्वभाव ऐसा वो ऐसी नेचर का और ऐसा सोचते हैं तो साहब उनसे अवार्ड वापस ले लिया गया
1: Brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.

आजकल अंधेरा बहुत देर से होता है, शाम देर से ढलती है। नहीं नहीं नहीं, आजकल तो थोड़ा जल्दी ढलने लगी है, क्योंकि भाई छुप छुप कर मिलने वालों को लंबा इंतजार करना पड़ता था गर्मियों में। अब सर्दियां शुरू हो रही हैं तो सूरज जल्दी ढलने लगा है, प्यार करने वालों का कारोबार चलने लगा है।

0: गुरुदेव गांजा, थैंक यू वेरी मच, आपका संदेश मिल गया है। और भाई हमें बैसन साहब याद दिला रहे हैं कि आज असित सेन साहब की पुण्यतिथि है। साउथ ऑल ट्रेवल का पैगाम आ गया है, नोट कर लीजिए। याद दिला रहे हैं कि भाई दे आर नोन फॉर दुबई डील्स, दुबई जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो अभी फोन कीजिए साउथ ऑल ट्रेवल को ऑन 0208-574-8410। They are at all protected. South Hall Travel.
1: Holiday breaks were brought to you by South Hall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Ye hai Laika Radio.
0: Laika Radio. Aur bhai main keh raha tha ki aaj Asit Sen sahab ki punyatithi hai. असित सेन भाई कुछ कैरेक्टर फिल्मों में ऐसे रहे हैं जो मतलब मेन रोल में तो नहीं आए, लेकिन जब वो छोटे मोटे रोल्स में भी आए तो छा गए, उनकी एक छवि, उनकी इमेज अपनी जो बन गई। अब ऐसे कष्ट मुखर्जी साहब होते थे, इसने इस तरह से बोलते थे भाई, दारू पी करके जो रोल वो करते थे, बिना पिए दारू पीए पीने वाले का रोल। असित सेन साहब भी पुलिस वालों के रोल में आते, निक्कर बहने और भाई हाथ में डंडा लेके, सैल्यूट कौन मारेगा पुलिस वाले से पूछते थे अपने जो है नीचे के अधिकारियों से। असित सेन साहब कॉमेडियन का रोल तो करते ही थे, करेक्ट रोल्स भी करते थे। तो असित सेन एक और भी थे जो फिल्मों में निर्देशन करते थे, लेकिन ये अभिनेता असित सेन एक्टर कॉमेडियन, आज उनकी डेथ एनिवर्सरी, उन्हें भी हम याद कर रहे हैं। और हमें भाई अपने निर्मला जी का संदेश मिला, कहती हमने आपको देखा और आपसे मिले भी थे, जरूर मिले होंगे जी, थैंक यू वेरी मच, अगली बार याद दिला दीजिएगा। नहीं मुझे याद है थोड़ा थोड़ा, बहुत सारे लोग मिलते हैं लेकिन मैं इतना भुलक्कड़ हूँ कि बाद में भूल जाता हूँ, पर आपने भाई मुलाकात की याद रखा, थैंक यू वेरी मच। और कौन है जिनके मैसेजेस सामने हैं? अरुण हैं, अमीन मोहम्मद साहब हैं, कहते हैं क्रिकेट में आपका एक शर्मा जाता है दूसरा आ जाता है, हैं मतलब वो इशारा कर रहे हैं रोहित शर्मा, अभी गए नहीं अगले मैच में खेल रहे हैं, कोहली भी खेल रहे हैं, तो वो कहते हैं कि रोहित शर्मा अब रिटायरमेंट लेंगे तो अभी शेख शर्मा उनकी जगह ले लेंगे, और अभी तो भाई और भी बहुत सारे शर्मा बाकी हैं। भरत गंगाराम जी, थैंक यू। अर्जुन जी, हंसा जी, सुनीता शर्मा जी, और कहते हैं दे आर मैनी मैनी रीजन्स वाई कृष्णा लव्ड राधा, चिंतन की ओर इशारा करते हैं बहुत सारे हमारे श्रोता। और हमारे विजय साहब क्या कहते हैं, आज चिंतन में प्यार का, प्रेम का चर्चा था, कहते हम प्यार की बातें करते हैं, करना आता प्यार नहीं, ये मतलब की दुनिया है, यहां कोई किसी का यार नहीं। बात तो सही है भाई, वो जो असली प्रेम होता है ना वो पाने की इच्छा में नहीं होता, कुछ देने की इच्छा, समर्पण, तो वही आज चिंतन में हमने जो है प्रतिष्ठित किया कि प्यार मांगना नहीं, प्यार चाहना नहीं, मैं अगर मांगू तो मांगू, तुम ना कुछ देना मुझे। भक्त कहता भगवान से, श्री कृष्ण से, राधा कहती है श्री राम से, मैं अगर मांगू तो मांगू, तुम ना कुछ देना मुझे, क्योंकि तुमने अगर मुझे कुछ दिया तो, वरना एक प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं, इश्क एक तरफ से ही मजदूर हो जाऊंगा मैं, शाम तुम होंगे शमा काफूर हो जाऊंगा मैं अगर रोऊं तो रोऊं, तुम अश्रु बिंदु न ढालना। बिंदु कवि है जिन्होंने ये गीत लिखा, क्यों नहीं ढालना भाई आंसू, क्यों नहीं गिराना, वरना आंखों से तुम्हारी दूर हो जाऊंगा मैं। आंसू अश्रु बिंदु, मैं अगर देखूं तो देखूं, तुम ना मुझको देखना, वरना दुनिया में तुम्हारी मशहूर हो जाऊंगा मैं। क्या बात है, मैं अगर मांगू तो मांगू, तुम ना कुछ देना मुझे, वरना एक प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊं।
2: जब लड़की के सर पे बाप का साया ना हो तो वो माँ का ही रास्ता अपना थी,
3: इसे हमेशा याद रखना।
4: काश कोई आ जाए
2: ने समझाए।
1: Catch the brand new show Sayoni starts Wednesday the 23rd of September at 6 PM on Star Plus and watch anytime on Jio Hotstar.
3: Leicester Falcon Cash and Carry Festive Shopping का परफेक्ट डेस्टिनेशन कनिश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फैल्कन स्टोर्स पर। ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं। फैल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच। मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 pounds सिर्फ 13.49। सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99। टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ 29.96। एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 9 rupees से शुरू और हर्जमैन बटर घी 20 kg सिर्फ 10.99।
4: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइस्टन स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE12JU एंड 2A रोल आउट सेल लिस्टर LE54UN।
5: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit Ambala.com. co.uk
6: I happen to happy valley feeling like a Diwali.
5: It's back and it's bigger.
1: Leica Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival, powered by Vam Jewelers.
5: On Sunday, 1st November 2026 at the Ramgarhia Centre.
1: For sponsorship and store bookings, contact Jack on 07803 240580 or visit diwalishoppingfestival.co.uk.
5: Exclusive charity partner, Go Dharmic.
7: The buy is an opportunity to now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone.
8: 11, 11.
5: Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
9: Dubai is the place. 11,
5: 11. Call the Danube Properties London office today on 0203 963 5757 and book your meeting.
8: Danube 11, 11. Danube Properties. 11.
10: We're finally going home for the wedding.
11: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
10: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
11: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destination with 4G and 5G where available.
10: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
11: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
10: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
1: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
5: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203 773 633 or visit mantraholidays.co.uk.
12: माय फ्रेंड दिमाग के सर्किट में जब भी स्पार्क हुई है स्टोन एज से लेकर न्यू एज तक तरक्की हुई है
1: इंडिया के टॉप 1% होस्टेड बाय अनिल कपूर एवरी वीकेंड एट 8 PM ऑन स्टार प्लस एंड जियो हॉटस्टार लाइक अ रेडियो नेटवर्क प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रगासन. Did you know you can advertise on this station, Leica Radio Midlands, plus our other offerings, Leica Radio Greater London, Leica Gold Greater London, and Leica Radio Greater Manchester. As a combined network, we can give you a competitive rate to spread your message to a wider audience. Call 0116 471 0697 or email sales@leicamedia.co.uk.
13: Tasty track of the hour, brought to you by Coca Noodles.

0: loss, up a stop loss.
1: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org, assuming you want to get noticed.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
3: और ये था आज का मनोरंजन प्रोग्राम मेरे भाइयों वीकेंड नजदीक है आपके लिए एक सुहाने और बड़े खूबसूरत वीकेंड की कामना करते हुए आपका ये दोस्त रवि शर्मा अब आपसे इजाजत चाहेगा राधाष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं और भाई ये दुआएं कि हमारा आपका संबंध भी उस प्यार की तरह अमर रहे जो राधा और कृष्ण के बीच है कि जो मिलते नहीं हैं लेकिन साथ चलते हैं

0: डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो लाइकागोल्ड.com पे.
1: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: surplus, अब है स्टॉप लॉस।
1: जब सामने तुम आ जाते हो, क्या जाने क्या?
2: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है।
3: Diamond Track of the Hour is sponsored by Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler committed to value, quality and transparency. That's a Malabar promise.

0: Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: Sangeet Sadhana. Sadhana.
2: Sangeet Atma ki Aavaz.
3: हमने कोई भी रियलिटी शोज में इतने सारे म्यूजिशियंस देखा नहीं
4: और जहां संगीत के जादू को इतनी शिद्दत दी जाए
5: वो सिर्फ एक मंच नहीं वो है हिंदुस्तान का संगीत स्थान
6: सारेगामापा शुरू हो रहा है 19 सितंबर से शनिवार और रविवार 7:30 बजे यूके आपके अपने जी टीवी HD और Z5 ऐप पर
0: सेलिब्रेट दिवाली विद चलो लेट्स गो एंड चाय चौपल दिवाली गाला 2026
7: सैटरडे 31st अक्टूबर एट द कॉन्फ्रेंस सुइट वेस्ट ब्रॉमेज एंजॉय अ वेजिटेरियन फीस्ट लाइव एंटरटेनमेंट एंड फैमिली फन
0: एडल्ट्स £30 चिल्ड्रन एज 5 to 12 जस्ट £15 एंड अंडर 5s गो फ्री
7: बुक नाउ एट diwaligala2026.eventbrite.com UK. For sponsorship, call Rakesh on 07436 594323.
0: Sponsored by Terence Duffy and Diamond Heaven. Radio partner, Leica Radio.
8: Namaskar. માર્ચ 2027 માં મહારાજા ટૂર્સ સાથે માણો જાપાનનું અદ્ભુત ચેરી બ્લોસમ સીઝન આવો અને જુઓ જાપાનનું સુંદર ચેરી બ્લોસમ શ્રેષ્ઠ સાઇટ સીન સ્વાદિષ્ટ ઇન્ડિયન જમવાનું અને ઘણા બધા યાદગાર અનુભવો માત્ર £4,499 પર પર્સન જેમાં ફ્લાઇટ્સ એકોમોડેશન અને એક્સકર્ઝન્સ બધાનો સમાવેશ છે સીટ્સ લિમિટેડ છે એટલે આજે જ તમારું બુકિંગ કરો વિઝિટ મહારાજા tours.co.uk ઓર કોલ 07956154846
9: आई है फिर से हैप्पी वाली फीलिंग लेके दिवाली
0: It's back and it's bigger.
10: Leica Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival, powered by Ram Jewelers.
0: On Sunday, 1st November 2026, at the Ram Garia Centre.
10: For sponsorship and store bookings, contact Jack on 07803 240580 or visit diwalishoppingfestival.co.uk.
0: Exclusive charity partner, Go Dharmic.
11: My friend, दिमाग के सर्किट में जब भी स्पार्क हुई है स्टोन एज से लेकर न्यू एज तक तरक्की हुई है
10: India ke top 1% hosted by Anil Kapoor every weekend at 8 PM on Star Plus and Jio Hotstar.
12: Your brain now, play the game now.
13: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
14: Leicester Little Garba Stars taiyar thai jao. KDR Events and Beach Promotion proudly presents Kids Garba 2026 with Live from India. Saturday 17th October, Bapore 1 thi 4 at Avanti Field School, Leicester. 1 thi 10 varashna kids mate entry just £5. Tickets available from Ticket Source or call PHL 07957477330. Masti, music and a full on Garba fun. Radio partner, Leica Radio.
13: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
0: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Asia Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: I happen to happy valley.
0: It's back and it's bigger.
2: Leica Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival, powered by Ram Jewelers.
0: On Sunday, 1st November 2026 at the Ram Garia Centre.
2: For sponsorship and store bookings, contact Jack on 07803 240580 or visit diwalishoppingfestival.co.uk.
0: Exclusive charity partner, Go Dharmic.
3: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
0: Opportunity. So now, be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 02-03-963-5757 to arrange your meeting.
4: हमारी रक्षक है वो.
5: बालाजी टेलीफिल्म्स प्रेजेंट्स द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट.
6: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है उन सबका मतलब क्या है, कौन कर रहा है?
5: मिस्ट्री, फैंटेसी, एक्शन. द वन स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया इन सिनेमाज फ्राइडे 25th September. फॉर यूके रिलीज डिटेल्स फॉलो बकरानिया मीडिया ऑन इंस्टाग्राम.
7: व्हेन यू नोटिस समथिंग रॉन्ग इट टेंड्स टू ग्रो एंड इवेंचुअली टेक ओवर. To the point you can't really think of anything else. If something in your body doesn't feel right, the thought it could be cancer can play on your mind. Tests could put your mind at rest. Finding out sooner is always better. Your NHS wants to see you. Contact your GP practice.
8: Hello everyone, this is Mamta Sharma and you are listening to my favorite, one and only, my girl, Radio Wali. Radio Wali is bringing you all the good vibes. So, stay locked.

0: Breaker Radio. This part of the show is brought to you by Ye Rishta Kya Kehlata Hai, every day at 7 p.m. on Star Plus, and stream it anytime on Jio Hotstar.
1: Dubai is an opportunity to now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone.
2: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months. Dubai is the place. 11, 11. Call the Danube Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting. Danube 11, 11. Danube Properties.
3: 11. साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दे डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410 दैट्स 8574-8410
0: साउथ हॉल ट्रेवल ऑटो प्रोटेक्टेड
4: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन
0: Creative's Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali. On Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham. A memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
5: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
6: Introducing Greens by Danube, a premium collection of townhouses and villas.
7: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
6: High appreciation.
7: In Dubai.
0: Raj Patton. Hey up, it's me, Raj Patton. Don't forget to catch me every weekday afternoon between 4 and 7 p.m. with Drive. All the usual grand musty, entertainment, business, sports, all the latest news headlines. Fused with the latest Bollywood blockbusters and, of course, the Punjabi hits. That's me, Raj Patton, on Drive.
8: Leica Radio. Easing you through the night with the Midlands' biggest Asian hits on Leica Radio.

0: Radio. Dubai is an opportunity. So now, be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports. There's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दिल डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574-8410 दैट्स 0208574-8410
2: साउथ हॉल ट्रेवल At all protected.
3: My friend, दिमाग के सर्किट में जब भी स्पार्क हुई है, Stone Age से लेकर New Age तक तरक्की हुई है.
2: India ke top 1% hosted by Anil Kapoor starts this Saturday the 19th of September at 8 PM on Star Plus and Jio Hotstar.
4: Use your brain now, play the game.
5: It's here. Leica Radio is now broadcasting Birmingham-wide on full-scale DAB digital radio. Leica Radio in Birmingham is a part of Leica, London's number one Asian commercial radio group. The sounds of love across the Midlands. The love sound. This is Leica Radio.

0: Friends. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
1: Save the date. Leica Radio brings you our first ever New Year's Eve bash. Leicester, 31st of December.
2: Aap Punjabi aa
3: gaya. Diljit Dosanjh non-stop on Leica Radio Punjabi. Listen now on the Leica Radio mobile app at leicaradio.com and on Alexa.
4: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर. ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी, सब कुछ फ्रेश और टेस्टी. लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए. तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS. कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं. क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर्स लेस्टर में.
5: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English, but louder.
6: Four beers, please, garçon!
5: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
1: This is the largest commercial Asian radio network in the UK.
7: Leica Radio.
1: Bollywood romantic hits throughout the night. This is the Love Sound.